0: सबसे ऊपर हूँ मैं, तुम सब पे साया भी है। फक द गवर्नमेंट, खाया है तो भाई लगाया भी है। जो भी लगाया है मुड़ के तो वो वापस आया भी है। आया के वो मेरी हसल से चलते हैं, आया के वो मेरी हसल से चलते हैं।
1: Yo yo yo les électropicales, ça va ou quoi ce soir? Nous c'est la So What. On est avec Greg ce soir, on est là pour foutre le maximum de bordel, alors on veut du bruit pour vous.